नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में

0: नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी हे नागपूर केंद्र आहे। 6:05 प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना।

0: मुख्य विषयो विकसित भारत एट द रेट विंशति सप्त चत्वारिंशत् कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिक नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपांत्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामि क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी हे नागपूर केंद्र आहे। हॅलो डॉक्टर या फोन इन कार्यक्रमाविषयीचं हे निवेदन। आज शुक्रवार दिनांक 12 जून रोजी सकाळी 10 वाजता आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी प्रसारित होणाऱ्या हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा विषय आहे मधुमेह। आपल्या प्रश्नांना उत्तर देतील डॉक्टर सुनील गुप्ता। श्रोत्यांनी थेट प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067 2560101 आणि 2529266। तेव्हा ऐकायला विसरू नका लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर आज दिनांक 12 जून रोजी सकाळी 10 वाजता आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी। निवेदन संपलं।
2: राधिका किती वाट बघायची, चल ना लवकर।
3: अहो हो आलेच।
4: कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हसता था रोता था।
3: आणि हे काय कार चालवताना हा डेकचा आवाज, यामुळे लक्ष विचलित होतं हो।
2: अगं

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

0: किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया

0: के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है। पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for ऑयल एंड

आप सुन रहे थे गजल, तहरीर किया था हसरत मुहानी ने और आवाज का जादू जगाया था गुलाम अली ने। ये प्रोग्राम की पेशकश थी जनाब आशीष सातपुते साहब की और पेशकर्दा थी नाहिद खान। इसी के साथ आज का आपशार यहीं खत्म होता है। सुबह बखैर।

नेटाल के बंदरगाह को डरबन कहते हैं और वह नेटाल बंदर के नाम से भी पहचाना जाता है। मुझे लेने के लिए अब्दुल्ला सेठ आए थे। स्टीमर के घाट पर पहुंचने पर जब नेटाल के लोग अपने मित्रों को लेने स्टीमर पर आए, तभी मैं समझ गया कि यहां हिंदुस्तानियों की अधिक इज्जत नहीं है। अब्दुल्ला सेठ को पहचानने वाले उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे, उसमें भी मुझे एक प्रकार की असभ्यता दिखाई पड़ती थी जो मुझे व्यथित करती थी। अब्दुल्ला सेठ इस असभ्यता को सह लेते थे, वे उसके आदि बन गए थे। मुझे जो देखते वे कुछ कुतूहल की दृष्टि से देखते थे। अपनी पोशाक के कारण मैं दूसरे हिंदुस्तानियों से कुछ अलग पड़ जाता था। मैंने उस समय फ्रॉक कोट वगैरह पहने थे और सिर पर बंगाली ढंग की पगड़ी पहनी थी। अब्दुल्ला सेठ मुझे घर ले गए। उनके कमरे की बगल में एक कमरा था, वह उन्होंने मुझे दिया। ना वे मुझे समझते और ना मैं उन्हें समझता। उन्होंने अपने भाई के दिए हुए पत्र पढ़े और वे ज्यादा घबराए। उन्हें जान पड़ा कि भाई ने तो उनके घर एक सफेद हाथी ही बांध दिया है। मेरी साहबी रहन सहन उन्हें खर्चीले मालूम हुई। उस समय मेरे लिए कोई खास काम न था। उनका मुकदमा तो ट्रांसवाल में चल रहा था, मुझे तुरंत वहां भेजकर क्या करते। इसके अलावा मेरी होशियारी या ईमानदारी का विश्वास भी किस हद तक किया जाए। प्रिटोरिया में वे मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहता था। मुझ पर उसका अनुचित प्रभाव ना पड़ जाए तो क्या हो। यदि वे मुझे इस मुकदमे का काम ना सौंपे तो दूसरे काम तो उनके कारकुन मुझसे बहुत अच्छा कर सकते थे। कारकुनों से गलती हो तो उन्हें उलाहना दिया जा सकता था, पर मैं गलती करूं तो क्या। काम या तो मुकदमे का था या फिर मुहर्रिर का था, इसके अलावा तीसरा कोई काम न था। अतएव यदि मुकदमे का काम ना सौंपा जाए तो मुझे घर बैठे खिलाने की नौबत आती। अब्दुल्ला सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत था। उनकी बुद्धि तीव्र थी और स्वयं उन्हें इसका भान था। रोज के अभ्यास से उन्होंने सिर्फ बातचीत करने लायक अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर अपनी इस अंग्रेजी के द्वारा वे अपना सब काम निकाल लेते थे। वे बैंक के मैनेजरों से बात करते थे, यूरोपियन व्यापारियों के साथ सौदे कर लेते थे और वकीलों को अपने मामले समझा सकते थे। हिंदुस्तानी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन दिनों उनकी फर्म हिंदुस्तानियों की फर्मों में सबसे बड़ी अथवा बड़ी फर्मों में एक तो थी ही। अब्दुल्ला सेठ का स्वभाव वहमी था। उन्हें इस्लाम का अभिमान था। वे तत्वज्ञान की चर्चा के शौकीन थे, अरबी नहीं जानते थे। फिर भी कहना होगा कि उन्हें कुरान शरीफ की और आम तौर पर इस्लाम के धार्मिक साहित्य की अच्छी जानकारी थी। दृष्टांत तो उन्हें कंठाग्रही थे। उनके सहवास से मुझे इस्लाम का काफी व्यवहारिक ज्ञान हो गया। हम एक दूसरे को पहचानने लगे। इसके बाद तो वे मेरे साथ खूब धर्म चर्चा करते थे। वे दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की अदालत दिखाने ले जाते। वहां कुछ जान पहचान कराई। अदालत में मुझे अपने वकील के पास बैठाया। मजिस्ट्रेट मुझे बार बार देखता रहा। उसने मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा। मैंने इनकार किया और अदालत छोड़ दी। मेरे भाग्य में यहां भी लड़ाई ही बदी थी। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे पगड़ी उतारने का रहस्य समझाया। मुसलमानी पोशाक पहना हुआ आदमी अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है, पर दूसरे हिंदुस्तानियों को अदालत में पैर रखते ही अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए। इस सूक्ष्म भेद को समझाने के लिए मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी देनी होगी। इन दो तीन दिनों में ही मैंने देख लिया था कि हिंदुस्तानी अफ्रीका में अपने अपने गुट बनाकर बैठ गए थे। एक भाग मुसलमान व्यापारियों का था, वे अपने को अरब कहते थे। दूसरा भाग हिंदू या पारसी कारकुनों, मुनीमों या गुमाश्तों का था। हिंदू

कारकुन अधर में लटकते थे, कोई अरब में मिल जाते थे, पारसी अपना परिचय पर्सियन के नाम से देते थे। व्यापार के अलावा भी इन तीनों का आपस में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य था। एक चौथा और बड़ा समुदाय तमिल, तेलुगु और उत्तर हिंदुस्तानियों के गिरमिटिया तथा गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों का था। गिरमिट का अर्थ है वह इकरार यानी एग्रीमेंट, जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिंदुस्तानी 5 साल तक मजदूरी करने के लिए नेटाल जाते थे। गिरमिट एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश है और उसी से गिरमिटिया शब्द बना है। इस वर्ग के साथ दूसरों का व्यवहार केवल काम की दृष्टि से ही रहता था। अंग्रेज इन गिरमिट वालों को कुली के नाम से पहचानते थे और चूंकि वे संख्या में अधिक थे इसलिए दूसरे हिंदुस्तानियों को भी कुली कहते थे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पठन।

0: चाहिए, लीवर खराब नहीं होना चाहिए, पैरों में इन्फेक्शन होके गैंग्रीन नहीं होना चाहिए, ये हो गया प्रिवेंटिव मेडिसिन, दैट्स कॉल्ड ए सेकेंडरी प्रिवेंशन। आज हमको इवन इन्फेक्शन जो कॉमन इन्फेक्शन है उस पर भी प्रिवेंटिव मेडिसिन लाके वैक्सीनेशन आ गए। अभी सबसे ज्यादा कॉमन होने वाला इन्फ्लुएंजा, अभी सीजन शुरू हो जाएगा, हम सभी लोगों को स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि एवरी डायबिटिक पर्सन शुड नाउ बी एक्सपोज टू वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा जैसी वैक्सीन वर्षात एकदा लागते, प्रत्येक मार्च अप्रैलला नवीन स्ट्रेन येते, ते आपण वैक्सीनेशन करून घ्यायला पाहिजे, तो आपला पूर्ण वर्ष कंट्रोल हे राहते। तसंच निमोनियाची पण वैक्सीन येते, याच्यावर आपण बोलू, पण एक फोन घेऊन या।
1: कॉल आलाय, हॅलो।
2: एक प्रश्न आहे डॉक्टर साहेबांना। डॉक्टर साहेब, मेरा एक 62 है, मैं डायबिटिक हूँ और मैं रोज इनवेरिएबली आधा घंटा साइकिलिंग करता हूँ, जिम की साइकिल जो स्टेशनरी साइकिल रहती है उससे, विदाउट ब्रेक फॉर मंथ टुगेदर। मेरा इसके बावजूद भी मेरा एचडीएल सिर्फ 41 है, तो इसका रीजन क्या है, ये पहला सवाल है
0: जी।
2: और दूसरा सवाल यह है कि मेरा सोडियम 128 है
0: जी,
2: और अभी मैं सोडा मिल्ट की टैबलेट ले रहा हूँ, तो क्या मैंने डबल सॉल्ट लेना चाहिए या उससे बीपी बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है?
0: नहीं,
2: और तीसरा सवाल यह है कि मेरा HbA1c 6.9 है, तो वो कितना ऑप्टिमम कितना रहना चाहिए?
0: पूरा कार्यक्रम सिर्फ 3 सवालों पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला जो था इनका सवाल कि मैं 62 इयर्स का एज का हूँ, तो स्टिल यंग, मीन्स एज गुड एज मी, 64 बॉर्न होंगे शायद ये। तो इस हिसाब से 6.9 यदि HbA1c है तो आपको डायबिटीज़ तो है, परंतु फिर भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है।
1: अच्छा।
0: आपका यदि आपने मेहनत करके डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज करके यदि 6.5 पर अंदर ले आते हैं तो और अच्छा रहेगा।
1: अच्छा।
0: ये पहला मैसेज अबाउट 6.9 के लिए। दूसरा मैसेज कि मैं रोज साइकिलिंग करता हूँ, उसके बाद भी मेरा HDL कोलेस्ट्रॉल 41-42 रहता है। HDL कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है मैडम जो कोई दवाई से यूजुअली नहीं बढ़ता।
1: अच्छा।
0: परंतु हमें ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल देखना चाहिए, हमने देखना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कितना है, HDL कितना है। नॉन HDL एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो कैलकुलेटेड होता है, जिसमें से ट्राइग्लिसराइड HDL निकाल के नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल भी यदि आपका कंट्रोल रहा तो आप कोशिश करें, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन टू इंक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल। हमारे जो श्रोताओं को मालूम नहीं है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, एक लाइन बोलूंगा कि भाई आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, ये अलग खराब कोलेस्ट्रॉल है, इनके बढ़ने से आपको हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ते हैं। परंतु एक हाई डेंसिटी लिपिड लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लोग HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यह आपको हार्ट अटैक से, ब्रेन अटैक से, गैंग्रेन से और बाकी जो रक्तवाहिनियों के अंदर जो क्लॉट आ रहा है उसको खराब होने से बचाता है।
1: अच्छा।
0: तो आपका HDL ज्यादा होना चाहिए और बाकी सभी कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, इसीलिए भाई साहब ने HDL नहीं बढ़ रहा है ऐसा प्रश्न किया। तो HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट इज आपको एक्सरसाइज करें, आप स्मोकिंग यदि करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें, और अपना स्टैटिन से, कुछ कुछ स्टैटिन से भी थोड़ा थोड़ा HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कुछ कुछ नई डायबिटीज की दवाइयां हैं जिससे भी थोड़ा थोड़ा HDL कोलेस्ट्रॉल पे फर्क पड़ता है, पर मार्जिनली नहीं। यदि नहीं भी बढ़ता है तो भी आप बाकी अपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पे रखिए और कोशिश कीजिए कि वैसे 40 भी खराब नहीं है। 45 नॉर्मल बोलते हैं हम लोग मेन में, और वीमेन में बोलते हैं 55।
1: अच्छा।
0: HDL अलग अलग होता है नॉर्मल, तो वो करना चाहिए। तीसरा इनका कुछ प्रश्न था अबाउट मेरे ख्याल से HDL और कुछ था, शायद भूल गए हम लोग, है ना? हाँ। तो आगे याद आएगा तो बता देंगे।
1: जी जी जी जी। एक और कॉल आए हैं, वो ले लेते हैं।
0: जी जी जी।
1: हेलो हेलो। हाँ बोला, नाव संगा।
3: गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ नागपुर से, लश्करीबाग से।
0: जी बोलिए
3: सर। मेरा ना एक सिंपल क्वेश्चन है, COVID-19 में सर अक्सर एक बात कहते थे कि मोर देन 50% पॉपुलेशन को कोविड हो जाए तो बॉडी अपने आप मतलब इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगी, तो सर क्या यही लॉजिक डायबिटीज पेशेंट में मतलब अप्लाई होता है कि अगर 50% पॉपुलेशन को डायबिटीज अगर हो जाए तो बॉडी एक रेसिस्टेंस पावर को मतलब डेवलप कर ले और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है शायद वो ना हो, क्या ये बात पॉसिबल भी है कि मतलब सर ऐसे माइंड में ख्याल है तो मैं सोचा आपको पूछ ही लो इस बारे में।
0: माइंड में इस तरह माइंड अमरजीत जी माइंड में इस तरह का ख्याल आना, इसका मतलब आप बहुत अलग तरह के व्यक्तित्व है आपका, क्योंकि यह ख्याल तो मेरे भी दिमाग में कभी नहीं आया। तो इस चीज़ को हम समझ लें कि कोविड एक इन्फेक्शन था
1: जी,
0: डायबिटीज़ इन्फेक्शन नहीं है। कोविड में इन्फेक्शन के कारण, कोई भी जब इन्फेक्शन, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं और वह एंटीबॉडीज़ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। डायबिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, डायबिटीज़ इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल एलिमेंट, ये कम्युनिकेबल एलिमेंट नहीं है।

0: बिल्कुल
1: ये इसके मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं, तो इसीलिए ऐसा बोलना कि डायबिटीज़ ज़्यादा होने से उसका ऐसा नहीं है, आपको डायबिटीज़ होने से मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल आपके सर के बाल से लेकर तो पैर के अंगूठे तक के हर तरह का कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ में हो सकता है। और इसीलिए अब यह हो रहा है कि हमारे जेनेटिकली हम लोग ज़्यादा प्रोन है और लाइफस्टाइल हमारी धीरे धीरे और ख़राब होते जा
0: हाँ
1: रही है, ये दोनों भी, इस पर बहुत बात हुई है तो इस पर बार बार बात करके अर्थ नहीं है, परंतु ये दो मेजर रीज़न है जिसके कारण डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारा जो कल्चर चेंज हुआ मैडम, देखा है तो पिछले 40 सालों में चेंज हो गया।
0: बिल्कुल
1: 1982 एशियाड में टीवी हमारे देश में आया और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज होती
0: चेंज
1: चली
0: हो
1: गई।
0: गई
1: आई एम फ्रॉम 64 बॉर्न, मैंने वाला भी एरा देखा है, आपने भी वाला एरा
0: जी,
1: देखा है,
0: बिल्कुल
1: परंतु ये नई जनरेशन है, ये सब 82 के बाद वाली पैदाइशी है, तो इन्होंने टीवी के सामने ही जन्म लिया, इन्होंने मोबाइल के साथ में ही बिस्तर पे मैडम ने इनको सिखा दिया, मदर ने, जब वो 1 दिन का हुआ था तब भी उसने मोबाइल देख लिया, तो आज भी देख रहा है। तो यह जो हमारा हमारा जो चेंज इन लाइफ स्टाइल है वो
0: लाइफस्टाइल
1: दैट इज़ टू बी या सो बट यू शुड नॉट कंपेयर विद इन्फेक्शन वर्सेज द
0: जी।
1: डायबिटीज़ या
0: इस सवाल के पहले और एक कॉल आया
1: जी
0: है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: ले
1: जी
0: लेते हैं।
1: जी
0: हेलो,
2: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घाटन जीवन बोलता है, मैं सुरेश
0: हो,
2: गुप्ता जीवार।
0: बोला बोला।
2: गुप्ता सर नमस्कार।
1: नमस्कार सुरेश जी, बोला लवकर बोला। हाँ
2: माझा प्रश्न असा आहे की डायबिटीजचे लक्षणं नेमकं कोणते असतात, आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की रॅटिना असणाऱ्या व्यक्तींनी डायबिटीजची म्हणजे डिसीज जी आहे याची शहानिशा करणं गरजेचं आहे का सर?
1: डायबिटीजचे लक्षणं म्हणजे खूप जास्त तहान लागणं, खूप जास्त पाणी पिणं, खूप जास्त लघवी होणं, वजन कमी होणं, वारंवार इन्फेक्शन होणं, ये सब ज़्यादा डायबिटीज़ के लक्षण हैं। परंतु इसके अलावा 90% लोगों में कोणत्याही प्रकारचे लक्षणं राहत ही नाही, म्हणजे 90% टाइप 2 डायबिटीजमध्ये तुमच्या 500 राहील, 600 राहील, तरी पण तुम्हाला मोठं काही लक्षण दिसणार नाही, फक्त सर 5-7 किलो वजन कम हो गया, अभी मेरे यहाँ एक मधुमेही भर्ती है और वो हार्डली उनको 4-5 दिन पहले ही मालूम पड़ा, एकदम से शुगर 500-600 हो गई, कीटोसिस यूरिन में आ गया, ब्लड में कीटोन बढ़ गया, और बोले मैं सर घर पे मैनेज करता हूँ। बोला अच्छा ठीक है, आप घर पे, आप कर नागपुर के हैं तो ठीक है, आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, करिए तो आप डेली एक बार कीटोन कम से कम कर लीजिए, दिन बढ़ता है तो तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए। तो गए फिर से दूसरे दूसरे नए नए सर कीटोन देखा तो 0.7 था, वो 1.7 1.8 हो गया, बोला और बढ़े इससे अच्छा फिर आप एडमिट होकर कर लीजिए, तो फिर वो किया उन्होंने एडमिट और भी अच्छे 2 दिन में छुट्टी भी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपने लक्षणों की तरफ ध्यान ना देते हुए
0: हाँ
1: कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है तो मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं,
0: बिल्कुल
1: क्यों चेक करूं, आप सभी लोगों के लिए मेरी बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, विनंती है हाथ जोड़ के आकाशवाणी की तरफ से और मेरे तरफ से कि यदि आपकी उम्र 30 साल की और आपके परिवार में डायबिटीज़ है तो साल में एक बार अपना शुगर का चेकअप कर लीजिए, यदि आपके परिवार में किसी को मधुमेह नहीं है दूर दूर तक के तो 35 साल के बाद साल में एक बार अपना, मैडम आप जो अपनी बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, उस दिन आप अपना हेल्थ कार्ड लेके निकलिए बाहर कि
0: बिल्कुल
1: देखिए आज
0: सर,
1: मेरा बर्थडे था, मेरे पास अब वो फालतू का केक और कुकीज खाने के बदले और फालतू का दोस्तों का पार्टी और दारू पीने से अच्छा है आप अपने जीवन में इस चीज को लेके आइए कि ये मेरा हेल्थ सबसे ज्यादा, हेल्थ इज वेल्थ, पुराने जमाने बोला आज से 100 साल 200 500 साल
0: आरोग्यम
1: पहले,
0: धन
1: हाँ
0: संपदा
1: आज हमको वो
0: जी,
1: चीज पे फॉलो करना चाहिए मैडम,
0: सही बात,
1: हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है, नहीं तो सब रखा रखा है आपका, हमने देख लिया कोविड के समय इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, बार बार मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है, मिलियनियर्स एंड बिलियनर्स लोग हैव लॉस्ट देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ इन इग्नोरेंस एंड जिसको बोल सकते हैं
0: जी
1: कि ध्यान नहीं दिया और चले गए। तो इसीलिए हमें हेल्थ के लिए आप अपने साल में एक बार अपना चेकअप करना, दुनिया की सबसे सस्ती जांच
0: हाँ
1: शुगर की है मैडम,
0: सही बात
1: आप हीमोग्लोबिन करने जाओ तो भी आपको पैसा लगता है, शुगर की जांच आप घर में 10 रुपए का आपका
0: जी
1: ग्लूकोमीटर है दोस्ती आपको फ्री में कर देगा, मोहल्ले में एक आधा सोशल वर्कर को पटा लो बेचारा, वो ले आएगा 100 रुपए की बोतल और वो आपको अपने 10 लोगों की शुगर वैसे ही कर
0: जी
1: देगा। तो
0: बिल्कुल
1: कहने का मतलब यह है कि हमने सोसाइटीज में फ्लैट स्कीम्स में वो गणपति मनाते हैं, दुर्गा मनाते हैं, ये सब हम लोग करते हैं, अलग अलग सोशल प्रोग्राम खोजागिरी मनाते हैं, वहाँ शुगर चेकअप भी शुड बी अ पार्ट ऑफ इट,
0: यस
1: व्हाई नॉट टू डू दिस सिंपल थिंग एंड एनीवन कैन डू इट, एक ना एक डायबिटीज तो बिल्डिंग में रहते ही 100% 100%
0: बिल्कुल
1: यानी मेरे को तो वो घर ही नहीं दिखता जहाँ कोई मधुमेह ना हो,
0: हाँ
1: है ना, तो ये हमको नई नई कुछ कुछ इनकलकेट हैबिट्स करनी पड़ेगी, हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स। यस,
0: फिर भी आप डायबिटीज मुक्त भारत का स्वप्न देख रहे हैं।
1: नहीं नहीं है मैडम, है वो स्वप्न है मेरा, और वो मेरा ही नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें आप भी शामिल हैं।
0: जी जी, एक और कॉल आया है। हेलो।

0: हॅलो.
1: हा बोला.
0: सर नमस्कार. सर
2: नमस्कार.
0: नमस्कार. अरुण वाघ बोलतोय.
2: हो अरुण, बोल बोल.
0: सर मला एक विचारायचं, जसं आता तुम्ही सुरुवातीला व्हॅक्सिनेशन म्हटलं, तर जसं कोणाला किती वर्षापासून डायबिटीस आहे व किती त्याची शुगर लेवल राहते, त्या मापदंडावर त्यांना व्हॅक्सिन देतात का व कोणत्या कोणत्या ऑर्गन्सला ते प्रोटेक्ट करते?
2: आतापर्यंत काय, हा आतापर्यंत अरुण काय झालेलं आहे, लोकांच्या डोक्यात व्हॅक्सिनेशन म्हणजे लहान मुलांच्या व्हॅक्सिनेशन, क्योंकि बच्चे का शुरुआत से बेचारा जिस दिन पैदा नहीं होता उस दिन से ही उसको वैक्सीनेशन शुरू हो जाते हैं. पेडिट्रिशियन आके समझा देता, गायनेकोलॉजिस्ट समझा देता, तो अपने मन में ऐसा बैठा है टीका है ना, बच्चों का टीका. अभी हमको एडल्ट वैक्सीनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा. तो एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत सारे हैं, उसमें से डायबिटीज वालों की इम्यूनिटी कम होने के कारण उनके लिए कंपल्सरीली जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है उन लोगों को, यानी 18 साल के बाद जो शुरू होते हैं, सभी मधुमेहियों को एक निमोकॉकल वैक्सीन आता है. निमोकॉकल उसको निमोकॉकल 20 करके भी आता है. वो जीवन में एक ही बार लेना पड़ता है.
1: अच्छा.
2: हाँ हाँ. तो वो 20 जीवन एक बार लगा लिया आपने, 18 या 20 से 50 से
1: पहले.
2: नहीं 18 साल की उम्र के बाद कभी भी ले सकते हैं आप यह वैक्सीन ले लीजिए. एक बार आपने लगाया तो जीवन भर का कवरेज हो जाता है. दूसरी चीज होती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हर साल में एक बार लगता है, उसकी नई स्ट्रेन आती है हर साल मार्च और अप्रैल में. वहां से शुरू करके हम कोशिश करते हैं कि जून तक सभी लोगों को दे दें. तो दो सीजन आते हैं मैडम इन्फ्लुएंजा के. एक ये बरसात वाला आपने शुरुआत किया, वो सीजन आता है, और एक फिर अपना नवंबर दिसंबर के बाद में फिर से एक सीजन आता है. तो यह दो सीजन से हमारे कवर उस एक वैक्सीन से हो जाते हैं. तो साल में एक बार वो लेना चाहिए. इसके अलावा एक हर्पीस की वैक्सीन होती है, हर्पीस शिंगल्स जिसको बोलते हैं, नागिन जिसको बोलते हैं. आज भी एक न्यूज़पेपर मैंने देखा नागिन के बारे में आया हुआ है कि बहुत सारे नए केसेस नागिन के देखने को मिल रहे हैं. वो हर्पीस जोस्टर है, उसके कीटाणु ऑलरेडी आपके शरीर में रहते हैं. जहां आपकी इम्यूनिटी हुई कम तो वो फ्लेयर अप हो जाते हैं और आपको आपको इन्फेक्शन हो जाता है. बहुत पेनफुल होता है उसको हर्पीस के इन्फेक्शन. उसके भी टीके आ गए मैडम. वन ऑफ द बेस्ट टीका जो है वर्ल्ड लेवल पे वो वाला है, जिसकी एफिकेसी 90% से भी ऊपर है.
1: अच्छा.
2: बाकी सभी वैक्सीन आपने और मैंने जो लिए हैं कोविड और बाकी सब वैक्सीन की एफिकेसी 50, 60, 65, 70 ऐसे परसेंट रहती है. इसकी 90% से ऊपर एफिकेसी है. दो वैक्सीन लगाने पड़ते हैं, पहले एक और विद इन 6 मंथ आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद विद इन 6 मंथ अपने को सेकेंड वैक्सीन लगानी पड़ती है. दोनों वैक्सीन यदि लग जाती है 6 महीने के अंदर तो आपका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाता है जी. तो इस तरह से इसके बाकी और भी वैक्सीनेशंस हैं अभी, और हिपेटाइटिस ए की भी आ रही है और भी कुछ वैक्सीनेशंस हैं, परंतु फिलहाल ये 2-3 वैक्सीनेशन हमारे कंपलसरी होते हैं. इसके अलावा हिपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है. हाँ. जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज खासकर किडनी वालों का रहा और डायबिटीज वालों को, उसके 3 वैक्सीन लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर EGFR. आपका किडनी का क्रिएटिनिन कितना है उसके बेसिस पर आपका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यदि 45 के अंदर है तो आपको डबल डोज लगाना पड़ता है वैक्सीनेशन. हिपेटाइटिस के 3 या 4 डोजेस लगाने पड़ते हैं, और यदि उसके ऊपर है तो आपको 0, 1 and 6, 1, 0 यानी आज एक बार, फिर 1 महीने बाद और 6 महीने. इस तरह से हिपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन. तो इस तरह से वैक्सीनेशन हमें, फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए.
1: बिल्कुल.
2: हमारे देश के लोगों को आदत ही नहीं, अरे फालतू का वैक्सीन का ही, वैक्सीन का फालतू का. लोगों में पीपल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एप्रिहेंशन अबाउट वैक्सीनेशन. दे आर वंडरफुल, दे आर सेफ, या दे आर गुड.
1: जी. हम श्रोताओं को बता दें, श्रोतो अपना एक तहत डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया हेलो डॉक्टर हा लाइव फोन इन कार्यक्रम. कार्यक्रमाचा आजचा विषय है मधुमेह अर्थात डायबिटीज, आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तर देत आहे डॉक्टर सुनील गुप्ता. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी, डॉक्टरांना प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स 6940067 2560101 आणि 2529266. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्या श्रोत्यांनी 0712 हा STD कोड लावावा. सर एक कॉल आया आहे.
2: जी जी जी मॅम.
1: हॅलो
3: हॅलो. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग सर. मी रानू बोल रही हूँ शंकरपुर से.
1: जी
2: बोलिए रानू जी.
3: सर मेरा ये सवाल था कि डायबिटिक का फिजिकली इफेक्ट तो दिखता है, पर मानसिक कुछ इफेक्ट होता है क्या? और दूसरा सवाल ये था सर कि जो दवाइयाँ हैं तो दवा गोलियां कब ली जाती है और इंसुलिन कब दिया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे.
2: अच्छा हुआ आपने तीसरा प्रश्न नहीं पूछा, पहले वो तीसरे वालों का भी उत्तर दे देते. उनका वो याद आ गया मुझे सवाल.
1: जी, जी,
2: उन्होंने पहला प्रश्न जो था कि उनका सोडियम 128 था. तो उन्हें बोला था कि सोडियम, तो मुझे सोडियम लेना चाहिए कि यस, यदि आपका सोडियम कम है तो आपने डॉक्टर की सलाह लेकर. सोडियम कम क्यों हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक नॉर्मल खाते पीते व्यक्ति का, यदि आप खाना बराबर खा रहे हैं, लूज मोशंस नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, किसी प्रकार की आप डायरेटिक नहीं ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोली के लिए ऐसी दवाई जिससे यूरिन में से सोडियम लॉस हो रहा है, यदि वो नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी आपका यदि सोडियम कम आ रहा है तो आपको रीनल हाइपोनेट्रीमिया करके एक कंडीशन होती है, नाइट्रोसूरिया करके कंडीशन होती है, यानी यूरिन में से आपका सोडियम बाहर निकलता है. तो यूरिन से यदि सोडियम बाहर निकल रहा है तो उसकी दवाइयाँ

0: अलग होती है, उसका कॉज ढूंढना पड़ता है, तो उन्हें ये भी मैसेज मिल गया होगा। अभी ये मैडम का जो प्रश्न है अबाउट
1: मानसिक तौर पर कुछ,
0: इसको हम लोग आजकल डायबिटीज डिस्ट्रेस करके नई टर्मिनोलॉजी है, डायबिटीज डिस्ट्रेस, हम लोग आजकल मेंटल डिसऑर्डर नहीं बोलते, हम बोलते हैं डायबिटीज डिस्ट्रेस। डायबिटीज से कई बार लोगों को तनावग्रस्तता आती है, पहले तो एंग्जाइटी आती है, जैसे डायबिटीज मालूम पड़ता है तो अरे मलस का झाला, मेरे को ही क्यों हुआ है, मुझे
1: तो
0: मैं ही क्यों, मैं ही क्यों,
1: पचता ही नहीं कि डायबिटीज
0: जी
1: हुआ
0: अरे
1: है।
0: शायद वो गुप्त सर कहें कि रिपोर्ट खराब होगी ना, तो इस तरह से, या वो मैं ऐसा करता हूँ शायद मैं कल रात को ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए हो गया होगा, या एक बार चेक करता हूँ इसके पहले, तो ऐसे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स दिमाग में आते हैं। तो फिर पहले होती है एंग्जाइटी, उसके बाद में गुस्सा आता है, मुझे ही क्यों, जब मालूम हुआ क्या है तो मुझे ही क्यों, दैट्स अनदर स्ट्रेस। एक बार जब वो मुझे ही क्यों होता है तो फिर आदमी लग झगड़ा करने की कोशिश करता है भगवान से, अपने आप से, और ये सब चीजें होती है। फिर तीसरा फिर सवाल आता है कि अब मुझे हो गया तो चलो मैं अब डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट होती है कि अच्छा डॉक्टर अब तो मेरे को हो गया है, मैंने दो बार चेक कर लिया है, हर घर में भी बार बार देख लिया है, घर के सब लोगों ने मेरे को प्रेशर लेके, चार लोगों ने अब आपके पास लेके आ गए हैं और अब मुझे आप प्लीज अच्छे से ट्रीट कीजिए। अब जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला इंसुलिन, आपको तो टाइप 1 डायबिटीज है, आपको तो इंसुलिन लगेगा जीवन भर, गोड़ी का नाई, मैं दुनिया की कुछ भी चीज खरीद सकता हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा, पर मेरे को इंसुलिन से बचा लीजिए। जब फिर उसके बाद फिर इंसुलिन जब नहीं समझ में आ गया कि बीटा सेल काम नहीं कर रहे, जीवन भर इंसुलिन लेना है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक स्ट्रेस आता है कि डॉक्टर साहब आपने चार बार इंसुलिन दिया है, एक बार में नहीं होता क्या, एक बार गोली ले लूंगा, एक बार इंसुलिन ले लूंगा, तो इस तरह की फिर एक स्ट्रेस आती है। फिर जब आप मान गए कि चार बार इंसुलिन, तो फिर मेरा बच्चा बड़ा हो पाएगा कि नहीं, उसका जीवन कैसा रहेगा, वह जीवन भर यदि उसको इंसुलिन नहीं आता तो उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, शादी होने के बाद अपनी हस्बैंड की या वाइफ की जो कर्तव्य हैं जो जो कपल के, वह मैं अच्छे से हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, सेक्स लाइफ बराबर हो कि नहीं, बच्चे होंगे उनको कहीं टाइप 1 डायबिटीज तो नहीं होगा, यह एक अलग फिर स्ट्रेस शुरू होता है। और फिर जब यह सब हो जाता है तो मेरा बच्चा नॉर्मल लाइफ जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, यह इतने सारे स्ट्रेसेस हैं मैडम। ये टाइप 1 के स्ट्रेस अलग रहेंगे, प्रेगनेंसी डायबिटीज के स्ट्रेस अलग रहेंगे, टाइप 2 डायबिटीज के स्ट्रेस रहेंगे, यंग व्यक्ति को जब 30 साल में डायबिटीज होता है तो उसके स्ट्रेस अलग रहेंगे, और जो 70 साल के डायबिटीज वाले मनुष्य को होता है तो उसके स्ट्रेस अलग रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज डिस्ट्रेस, इस पर हम बात करेंगे। शायद एक फोन आया जी।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ बोला, प्रश्न विचारा।
2: युवराज पाटिल नागपुर बोलतो।
1: बोला बोला बोला प्रश्न।
2: मेरा प्रश्न ये है कि ये व्हाट्सएप पर भी आता है, बहुत जगह ये लोग भी बताते हैं कि अमुक अमुक गांव गांव में भाई वो दवा दवा मिलती है, पर एक बार लेने से डायबिटीज जर्स
0: शायद फोन कर गया। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हमें यही ध्यान रखना है कि एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हमें जीवन में हमेशा आत्मसात करना चाहिए, आँख खोल के रहें, भटके ना, क्योंकि इस तरह के भटकाव मैडम आते रहते हैं, ये सिर्फ डायबिटीज में आएंगे या इसमें आएंगे, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, अलग अलग बीमारियों में हो सकता है, अलग अलग हेल्थ से अलावा बाकी सब्जी में भी हो सकता है। तो आपको खुद ही इतना सुशिक्षित रहना है, संभल कर रहना है कि अभी म्यूचुअल फंड वगैरह चीज़ें होती है उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं, आजकल वो साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमको हर जगह अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि पहले इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, जब मोबाइल नहीं था तो इतने इन्फ्लुएंसेस नहीं थे, इतने प्रेशर नहीं थे, सादी लाइफ थी, पिताजी ने बोला, टीचर ने बोला, मम्मी ने बोला, घर वालों ने बोला, दोस्त एक सही दोस्त ने बोला, हमारी पूरी जिंदगी उस पर निकलती थी। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बाहर से आ जाते हैं, वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, तो उसमें डायबिटीज भी अछूता नहीं है, आपको संभल कर रहना है।
1: बिल्कुल, हम स्ट्रेस के बारे में सवाल का जवाब दे रहे
0: जी
1: थे।
0: जी तो स्ट्रेस जो मैंने बताया मैडम कि स्ट्रेस आपको यदि सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेस है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। है ना, इसमें और स्ट्रेस के कारण फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। अक्सर मैंने देखा है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वहां भी स्ट्रेस का बड़ा रोल रहता है। यानी अभी आपका शुगर कंट्रोल रहा तो आपको सब कुछ नॉर्मल रहेगा, आपका परफॉर्मेंस नॉर्मल रहेगा, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, ऑर्गेजम नॉर्मल रहेगा, सिक्रीशंस नॉर्मल रहेंगे, एंड यू कैन एंजॉय सेक्स एज वेल एज यू विल हैव गुड फर्टिलिटी इन फ्यूचर, क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छे रहेंगे, क्वालिटी ऑफ ओवाज अच्छे रहेंगे। उसके ठीक एकदम अपोजिट आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप थक जाओगे जल्दी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, और उसके बाद में आपको मानसिक फिर उसके वहां से मेंटल डिस्ट्रेस शुरू हो जाएगा। कारण हुआ शुगर अनकंट्रोल रहना,
1: बिल्कुल,
0: पर बेचारा डायबिटीज बदनाम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि आपको इस तरह की किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यदि आती भी है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। स्ट्रेस बहुत कॉमन

0: है मैडम, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कई बार जॉब में अपन परफॉर्म बराबर नहीं कर पाते हैं, आपकी ड्यूटी आप बराबर नहीं कर पाते हो, आपके बॉस से फिर आपका फिर, और फिर चिड़चिड़ापन कॉमन होता है। दूसरा, लो शुगर इज वन थिंग विच अगेन कॉजेज डिस्ट्रेस।
1: जी,
0: जैसे आपको बोला है कि भाई आप इंसुलिन ले रहे हैं या गोलियां ले रहे हैं, आपको हर 3.5 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है।
1: जी,
0: खाली पेट भी नहीं रहना है, पेट भर के भी नहीं खाना है। आपने लंबा गैप दे दिया कि आपको काम में बहुत बिजी थे और आपने कुछ नहीं खाया, शाम को आपका शुगर 70 हो गया 60 हो गया, आप इरिटेट होने लग गए, आप किसी के ऊपर भी चिल्लाने लग गए, आपने फाइल फेंक दिया अपने ऑफिस में, आपका इंप्रेशन खराब हो गया। तो यह जो चीजें हैं यह सब डायबिटीज में हो सकती हैं, और उससे फिर आपकी, फिर आप ना चाहते हुए भी फिर उससे एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले एरिया में जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा एरिया है काम करने का। यदि आपको ऐसे लगता है तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ डिस्कस करें, फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करें, और उचित उसकी इलाज की ज़रूरत है तो इलाज भी करें। कल की ही बात बताता हूँ मैं, एक लेडी आई और वो मेरे यहाँ बोले, सर मेरे को बस अच्छा नहीं लग रहा, और बोले इसके पहले एडमिट रह चुके थे, उनके दूसरे कारणों
1: अच्छा,
0: के कारण
1: डायबिटीज़
0: है, किडनी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और सब कुछ है, यंग बच्ची है, ये सब सब सब ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कुछ स्ट्रेसेस फैमिली की रहती हैं, वो भी हैं शादी आदि ये जो भी। तो वो बता नहीं पा रही थी कि मैंने बोला आपको किसी प्रकार का तनाव है, नहीं नहीं मैं एडमिट हो जाती, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कमजोरी है। फिर किडनी वाले डॉक्टर ने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, पैरामीटर्स जो थे वो स्टेबल थे, सब कुछ थे। फिर मैंने एक चीज़ पूछा कि आपको किसी बार तनाव है, बोले नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो आपको एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड को मालूम रहता है कि मैं मैडम के साथ अभी बात कर रहा हूँ और मैं इस समय ऑल इंडिया रेडियो के टेबल पर बैठा हूँ, परंतु सबकॉन्शियस माइंड कुछ तो भी सोचते रहता है। आपको सडनली एक कोई व्यक्ति दिख जाता है 20 साल पहले का, जिसके साथ आपने कभी सोचा भी नहीं, और वो दिख जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर रहता है। फिर एकदम से वो ओपन हुई महिला मुझसे कि हाँ सर आजकल मेरे को सपने बहुत दिखते हैं, और वो चीज़ दिखती है जो मैंने बचपन में किया है, अपने माँ के यहाँ थी वाली चीज़ें दिखती है। तो मेरा मैडम इसका मतलब आपको सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो सकता है, अभी एक बहुत बड़ा साइंस है। फिर उनको साइकेट्रिस्ट ने देखा, उन्होंने बोला अरे सुनील ले तो मेरा एरिया है काम करने का, एक गोली से काम हो जाएगा, एंड शी हैज बीन डिस्चार्ज नाउ बिकॉज शी वाज एडमिटेड फॉर ऑल दिस ऑब्जर्वेशन। तो कहने का मतलब यह है कि हमें छोटी छोटी चीजों को भी उसमें, और घर वालों फैमिली का भी सपोर्ट उसमें बहुत जरूरी है, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट एक दूसरे को जरूरी, बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स को भी सपोर्ट सिस्टम लगता है ग्रैंड चिल्ड्रन का। तो ये पूरा एक ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए, वह उसमें मदद करती है। तो जिस फैमिली ज्वाइंट फैमिली में ये सब चीजें कम है मैडम, क्योंकि आपका बफर सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है।
1: सही,
0: आपको ग्रैंड पेरेंट है, आपके पेरेंट्स हैं, और आप खुद हैं, और आपके फिर बच्चे भी हैं। तो यदि यह 3 जनरेशन साथ में रहती है तो इसका बफर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। परंतु ये जब आप अकेले हस्बैंड वाइफ रहते हैं, एक आधा बच्चा रहता है छोटा सा, तो फिर ये बफर सिस्टम वीक होता है, फिर वहाँ आपको इस सब चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
1: एक कॉल है, हेलो।
2: हाँ डॉक्टर साहब, मेरा जब थर्ड क्वेश्चन का सवाल आपने नहीं दिया,
0: सोडियम बता दिया मैंने, आपने सुना नहीं, आप शायद अपने क्वेश्चन में ही भूले हुए हैं, मैंने बोल दिया है आपने।
2: हाँ, नहीं सर, फिर सवाल ये कि मैं टेबल सॉल्ट ले रहा हूँ।
0: जी जी, आप ले, आप जी, आप अपने
2: फैमिली फिजिशियन ने टेबल सॉल्ट प्रिस्क्राइब किया है,
0: आप मेरे
2: टैबलेट,
0: शायद हमने आपको, आप शायद भूल गए, आपने सुना नहीं अच्छे से, आप रेडियो के पास नहीं थे, इसीलिए हमने आपका उत्तर दे चुके हैं। आपको हमने बताया है कि आप पहले कारण ढूंढिए कि आपका क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है, और उसको करेक्ट कीजिए, और टाइम के लिए तो आपको जब सोडियम कम होगा तो लेना ही है ये सब तरह की दवाइयाँ। तो आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर से यूरिन सोडियम का टेस्ट कराइए, और देखिए कि यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है क्या सोडियम, उसके कारण लॉस हो रहा है क्या, या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की या कोई दूसरी दवाइयाँ जिनसे यूरिन से सोडियम लॉस होता है, तो वह देख के और उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिए। इधर अपन सोडियम कम कर रहे हैं किसी दवाई से अननोइंगली, और उसके बाद सोडियम को रिप्लेस कर रहे हैं, इससे ना करते हुए दवाई बंद करें या कम करें जिसके कारण सोडियम लॉस हो रहा है। ठीक है
1: जी, आप हमेशा ही कहते हैं कि अपने आप ही डॉक्टर मत बनिए,
0: जी जी जी जी
1: सलाह लीजिए, वो इनको अब हमने यही कहना चाहिए।
0: जी,
1: जब भी हमारी कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही थी, तो कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह का अंतर संबंध है, मतलब मधुमेह है तो
0: जी जी मैम, इसको बोला जाता है डायबिटिक डिसलिपिडेमिया।
1: जी,
0: डायबिटिक डिसलिपिडेमिया ये बहुत स्पेसिफिक होता है।
1: जी,
0: इसमें LDL टोटल कोलेस्ट्रॉल करीब करीब सेम रहेगा, मेरा और आपका, यदि हम में से किसी एक को डायबिटीज है तो सेम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहेगा।
1: अच्छा,
0: और HDL कम रहेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो LDL पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एथरोजेनिक होते हैं, सबसे ज़्यादा अपने खून की नलियों के लिए डेंजरस होते हैं, और वहाँ पर क्लॉट बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है LDL कोलेस्ट्रॉल का, वो भी लिपिड प्रोफाइल का एक हिस्सा है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल जो डायबिटीज में होता है वो स्मॉलर और डेंसर होता है, उसका साइज कम होता है और ज़्यादा

0: डेंस होता है जो अपनी वेसल्स के लिए और खराब होता है।
1: अच्छा
0: तो तीन एबनॉर्मलिटी मैंने आपको
1: हाँ
0: बताई,
1: हाँ
0: ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है डायबिटीज में,
1: हाँ
0: हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, एचडीएल रिलेटिवली कम होता है वर्सेस नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नंबर तो बराबर रहेगा, 120 120 110 110 डायबिटीज नॉन डायबिटीज, परंतु उसकी क्वालिटी खराब होती है। दैट
1: अच्छा
0: से खराब क्वालिटी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, डेंसर एंड स्मॉलर, विच इज मोर एथरोजेनिक एंड एंड बैड फॉर द वेसल्स। सो
1: बिल्कुल
0: इस तरह से दिस इज डायबिटिक डिसलिपिडीमिया, और
1: हाँ
0: इसीलिए हमें सिर्फ शुगर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें
1: हाँ
0: शुगर, ब्लड प्रेशर
1: हाँ
0: और लिप कोलेस्ट्रॉल, इन
1: अच्छा
0: तीनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल पहले हम अभी भी पहले कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी आप रिपोर्ट खोलोगे तो उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 तक नॉर्मल
1: हाँ
0: दिखाता है।
1: हाँ
0: डायबिटीज वाले रहे बेचारे, उनको लगता है 110 120 अच्छा है। मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ गोली चालू करो, अरे गुप्ता सर फालतू का कोलेस्ट्रॉल का गोली दे देते हैं। अरे कोलेस्ट्रॉल अपने को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल
1: जी
0: सबसे यदि डेंजरस है, उसको यदि आपने 70 के नीचे रखा तो बेस्ट है, यदि आपने 50 के नीचे लिखा तो एक्सीलेंट है,
1: क्या
0: 50 के
1: बात
0: अंदर
1: है
0: रख दिया तो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आजकल जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं,
1: हाँ
0: खासकर कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटीज
1: हाँ
0: वाले, जो लोग थोड़ा सा मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में जानते हैं, वो अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम से कम रखना चाहते हैं, जिससे हमारी जीवन की लॉन्गेविटी बढ़ती है।
1: बिल्कुल
0: इसमें तो आप जी ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 70 से तो नीचे रखना ही है, यदि आपको हार्ट, ब्रेन या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो 50 के नीचे रहेंगे तो बेस्ट है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: सर, अभी समय हमारा खत्म हो रहा है तो यहीं रुकना पड़ेगा। श्रोते हो अपने कथोतात। हेलो डॉक्टर, डायबिटीज केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, हॅलो डॉक्टर, हा लाईव फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रमाचा आजचा विषय होता मधुमेह, आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली डॉक्टर सुनील गुप्ता यांनी। या कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य लाभलं होतं नंदकिशोर पोकळे आणि सुभाष शास्त्रकार यांचं, निर्मिती सहाय्य होतं अतुल साखरकर यांचं, आणि सादरकर्त्या होत्या संगीता हरसपुरे। मी स्वाती उद्दार डॉक्टर सुनील गुप्ता यांच्यासह इथेच आपला निरोप घेते, पुन्हा भेटण्यासाठी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आपण ऐकत होतात हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रमाचा आजचा विषय होता डायबिटीज, आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली डॉक्टर सुनील गुप्ता यांनी। हा कार्यक्रम आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूर केंद्रावरून एकाच वेळी प्रसारित करण्यात आला.

जो खेल दिखाए छुक छुक करती रेल चलाए सीटी देकर सीट पर बैठो एक दूजे की पीठ पर बैठो आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे सारी सीधी लाइन में चलना आंखें दोनों नीचे रखना बंद आंखों से देखा जाए आंख खुले तो कुछ ना पाए आओ बच्चों रेल चलाए सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम लोग नहीं आओ।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान।

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा।

जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछली पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मछली पट्टम उंगोल नर्दिगोल नर्दिगोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
3: जी,
4: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
3: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
4: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
4: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
3: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
4: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
3: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
4: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
3: जी,
4: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
3: जी,
4: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
3: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
4: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
3: जी,
4: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
3: जी,
4: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
3: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
4: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
3: जी,
4: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
3: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
4: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
3: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
4: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
3: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
4: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
4: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब

0: सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी।
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि

चींटियां कितने रंगों की होती हैं? एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: کیوں نہ اپنائیں خوشیاں، اپنا کر منو درپن۔ کال کریں 844-844-0632 پر اور پائیں NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने

0: श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने

खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक

0: की रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजतायत। प्रसारित करत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात भूषण गोडे यांच्या ख्याल गायनात राग मधुवंती। विलंबित ख्याल एक तालामध्ये निबद्ध आहे तर द्रुत ख्याल हा तीन तालामध्ये

0: युववाणी हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: ध्यानधारणा योगसाधना ही भारतीय संस्कृतीने जगाला दिलेली एक अनमोल देणगी आहे. हीच ध्यानधारणा जगभरातल्या विविध प्रकारच्या हिंसा थांबवण्यासाठी नेमकी दिशा देईल अशा ठाम विश्वासाने जगभरात कार्यरत असलेले केमिकल इंजिनिअरिंग, पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग ते इनर इंजिनिअरिंग असा प्रवास अनुभवणारे मंदार आपटे आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आपल्याला भेटायला येत आहेत FM गोल्ड वाहिनीवर.
2: मेंटल हायजीनसाठी आपण काय करतो, दर दिवशी आपण काय करतो, त्याला साधना म्हणू शकतो आपण. धन म्हणजे वेल्थ, साधना म्हणजे माझं वेल, जे कोणी चोरून घेऊ शकत नाही.
1: आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष संवाद जरूर ऐका. दिनांक 19 आणि 20 जून रोजी सकाळी 11 वाजता 100.1 MHz FM गोल्ड वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR ऍप वरही.
3: मैत्रिणींनो, दिनांक 14 जून 2026 रविवार रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळ या राज्यस्तरीय कार्यक्रमामध्ये आपण सुरुवातीला ऐकू शकाल बालिका आणि महिला यांच्यासाठी असणारे सुरक्षा विषयक कायदे आणि त्याची अंमलबजावणी याविषयी ऍडव्होकेट भक्ती धोंडोपंत कुलकर्णी यांच्या मुलाखतीचा भाग पहिला आणि त्यानंतर महिलांचे आजार आणि योग याविषयी आयुर्वेद तज्ज्ञ आणि योग शिक्षिका डॉक्टर मंजुषा चौधरी यांच्या मुलाखतीचा भाग पहिला. ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती असेल.
0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6 वाजत आहेत. यानंतर सुरुवातीला हिंदीतून आणि 6:05 इंग्रजीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही त्या सहक्षेपित करीत आहोत.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए. अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी. सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है. सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा. ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है. ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे. पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है. अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है. ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं. इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया. मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है. इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए. विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाला

0: महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को NEET UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नीट फेरपरीक्षेसाठी पेपरचा कालावधी 15 मिनिटांनी वाढवला। सुशासन आणि सक्षम प्रशासन हे मोदी यांच्या सत्ताकाळाचं मुख्य बलस्थान आहे असं मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिपादन। नागपूरच्या कोराडी तलावाचे अत्याधुनिक पर्यटन केंद्रात रुपांतर होणार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे। आणि पुणे यार्डमधील महत्वाच्या अभियांत्रिकी कामासाठी नागपूर पुणे एक्सप्रेसची 13 आणि 14 जूनची फेरी रद्द। आता सविस्तर बातम्या। येत्या 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET UG फेरपरीक्षेचा कालावधी 15 मिनिटांनी वाढवण्यात आला आहे। ही परीक्षा सुरक्षित आणि गैरप्रकारमुक्त वातावरणात व्हावी याकरता राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने माजी परीक्षार्थींकडून सूचना घेऊन विविध उपाययोजना केल्या आहे। त्यानुसार आता परीक्षेचा कालावधी 195 मिनिटांचा केला असून ती दुपारी 2 ते 5:15 या वेळेत होईल। विद्यार्थ्यांची हजेरी पत्रकावर सही करणं, ओळखपत्र आणि इतर दस्तऐवजांची छाननी करणं या कामासाठीचा वेळ त्यात अंतर्भूत राहील। त्याचप्रमाणे कच्च्या कामासाठी प्रश्नपत्रिकेत वाढीव जागा दिली जाईल। विद्यार्थ्यांनी प्रवेशपत्र आणि माहिती पत्रकावरच्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्या असं आवाहन NTA ने केलंय। पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द सर्वात जास्त कालावधीची आणि देशाची सर्वांगीण प्रगती साधणारी ठरल्याचं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय। ते काही वेळापूर्वी मुंबईत वार्ताहर परिषदेत बोलत होते। सुशासन आणि सक्षम प्रशासन हे मोदी यांच्या सत्ताकाळाचं मुख्य बलस्थान आहे असं ते म्हणाले। मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं 25 कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेच्या वर आणलं हा दशकातला चमत्कार असल्याचा उल्लेख संयुक्त राष्ट्रसंघानेही केल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले। 80 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा पुरवली, तसंच शेतकरी सन्मान योजना, जनधन योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुणांसाठी विविध योजना राबवल्या।
2: सुशासन आणि सुप्रशासन या दोन गोष्टी मोदीजींच्या या संपूर्ण कार्यकाळाचं एक महत्वाचं बलस्थान राहिलं। सरकारी योजनांचं डिजिटल मॉनिटरिंग, विविध योजनांचे लाभ थेट खात्यात जे लाभ मिळाले आहेत त्यात आतापर्यंत 51 लाख कोटी रुपये 51 लाख करोड इतके थेट नागरिकांच्या खात्यामध्ये पैसे हे मोदीजींनी वेगवेगळ्या योजनांतून दिले।
1: गेल्या 12 वर्षात दूध उत्पादन 70% वाढल्यामुळे आता आपला देश जगातला सर्वाधिक दुग्धोत्पादन करणारा

0: आपसे विदा लेने का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं तब तक के लिए अनुमति दीजिए नमस्कार
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल साफ सफाई आवास खेल विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना वायुसेना थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी पानी साफ करने वाली किट दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और

0: कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास

0: की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समय पर तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित

0: अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He